ओम श्री दीपनारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: श्रीदेव पुरुषा भगवान की जय।
1: वेरी नाइस, थैंक यू हरिपुरी जी, वेरी गुड मंत्रा भजन एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट एवरीथिंग, कुकिंग ऑल्सो, क्लीनिंग ऑल्सो, वर्किंग ऑल्सो, भजना ऑल्सो, एवरीथिंग वेरी गुड, थैंक यू। हरिओम।
2: हिमालयन सिद्धवतार श्री अलगपुरी जी महादेव
1: की जय।
2: देवदी देव श्री देवपुरी जी
1: महादेव की जय।
2: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
2: हिंदू धर्म समृद्धि स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: श्री विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: की जय। राज्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ DC सुरंगानंद तिवेराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो TV। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटास इट भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

आने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।

बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए मीरा के श्याम की जय। आखिरी एक भजन कबीरदास जी का, चदरिया झीनी रे झीनी या तो राम रंग रस बीनी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो।

ओम शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, आपका धन्यवाद। If you want, thank you.

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

0: जी गुरुदेव। महिला
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

ये अमर मंत्र है ऐसो, ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे, बड़े भागी जन सुने रो, मोरा सदगुरु दियो।

0: की
1: जय। जय पुरुषमहादेव
0: की
1: जय। श्री शरण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस की जय।
0: पिता गुरुदेव की जय। शांति शांति। जी जी हरी ओम। अभी पहला मौका है, पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपकी शरण में देश विदेश में आपके आश्रमों में जहाँ आप आदेश करो।
1: कमरा दे दिया उनको,
0: रुकूंगा आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
2: बोले शंकर भोले हो, हो शंकर भोले।
0: शंकर भोले रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी। I am presenting Guru Sharanam.
2: Jai Shankar Bhole, Jai Shankar Bhole, da da da da da. Jai Shankar Bhole, Jai Shankar Bhole, Shankar Bhole, Shankar Bhole, ye sara jag bole. Jai Shankar Bhole, Jai

शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः मातृता गुरुदेवाय नमः भारत भूमि नमः ओम

ओम श्री प्राण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन दार

0: प्रपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: श्री श्री देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म।

सारंग धर के देश पीवा लवेला के देश चालो चाल हे साई त्यों सतगुरु सारंग धर देश चालो चाल हे सहेलियां सतगुरु सारंग धर।

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: देवपुरी श्या महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
2: जय।